0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण

0: सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृह मंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

0: श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दम भी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे अनुसार। एखन सुनुन
0: प्रभु श्री राम भजन
1: करता हूं शिल्पी मौसुमी गंगोपाध्याय।
0: और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती

0: ভজন শুনলেন মৌসুমী সোহিনী মজুমদারের কণ্ঠে, আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা। একটু পরেই শুনুন খবর।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রুয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধি ঝা। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लाख आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लाख ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली

0: अनन्तरं वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला सम्बद्धानां अशेषेषु पक्षेषु मन्थनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला

0: पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising of several ministers. The delegation will visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said he will join the first World Yogasan Sports Championship 2026 virtually today. The championship will be held at Ahmedabad in Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion, self-reliance in milk, eggs, fish and meat, sports promotion, economic corridor development, infrastructure and connectivity, and handloom and handicrafts. Union Minister for Development of Northeastern

बोलू ना बोल तू पापा पापा मा पा धा पा रे गा मा मा मा

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षता

0: के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लेरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लेरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। JEM से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि JEM की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिनसे,

0: ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले।

राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस

0: शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेज अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है। जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council NEC in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रसधारा में, और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनकी मुस्कान, उनके सपने और उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन आज के समय में बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ऑनलाइन दुनिया से जुड़े अनेक खतरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम सभी बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और बच्चों को भी उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दें। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज की हमारी प्रस्तुति आधारित है, बाल सुरक्षा एवं जागरूकता। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सुंदर गीत के साथ।

तो चलिए दोस्तों, बचपन के जीवन के सबसे सुंदर और संवेदनशील चरण होता है। इसी उम्र में बच्चे सीखते हैं, समझते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि उन्हें सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण मिले तो वे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। बाल सुरक्षा का अर्थ केवल दुर्घटनाओं से बचाव नहीं है, बल्कि बच्चों को हिंसा, शोषण, उपेक्षा, भेदभाव और साइबर अपराधों से भी सुरक्षित रखना है। हमारे संविधान ने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया है। इसके अलावा भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कहा भी गया है, हर बच्चे की मुस्कान में छिपा है कल का उजियारा, उसकी सुरक्षा और खुशहाली हमारा कर्तव्य है सारा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रसधारा। तो दोस्तों प्रत्येक बच्चों के कुछ मूलभूत अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि जीवित रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, अपनी बात रखने और सोने जाने का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसय में अधिनियम और भारत के विभिन्न कानून इन अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। जब बच्चे अपने अधिकारों को जानते हैं तब वे गलत परिस्थितियों को पहचानने और सहायता मांगने में अधिक सक्षम होते हैं। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है, यदि कोई बात उन्हें असहज लगे तो वे अपने माता पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से तुरंत बात करें। और दोस्तों बच्चों की सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है। माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों से नियमित बातचीत करें, उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें, घर में बिजली, गैस, दवाइयों और खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रखें, बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम बताएं। विद्यालय में भी सुरक्षित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए, बच्चों को भयमुक्त माहौल मिलना चाहिए, खेल, प्रयोगशाला और परिवहन संबंधी सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए। और जब घर और विद्यालय दोनों मिलकर कार्य करते हैं तब बच्चे अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनते हैं।

दोस्तों, बाल सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए। ऐसा स्पर्श जिससे वे सुरक्षित और सहज महसूस करें, वो उचित स्पर्श हो सकता है। ऐसा स्पर्श जिससे डर, असहजता या परेशानी महसूस हो, वह अनुचित है। और साथ ही बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि उनका शरीर उनका अपना है, उन्हें नहीं कहने का अधिकार है। किसी भी असहज अनुभव के बारे में तुरंत विश्वसनीय व्यक्ति को बताना चाहिए, क्योंकि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

तो दोस्तों, आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया बच्चों की पढ़ाई और मनोरंजन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, जैसे कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बच्चों को अनजान लोगों से बातचीत करने से बचना चाहिए, व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करनी चाहिए और माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर उचित निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों को ये समझाना आवश्यक है कि इंटरनेट की दुनिया में भी सावधानी उतनी ही जरूरी है जितनी की वास्तविक जीवन में। तो दोस्तों, आज भी कई बच्चे बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। भारत में बाल श्रम और बाल विवाह कानूनन अपराध है। हर बच्चे को शिक्षा, खेल और विकास का अवसर मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे से उसकी उम्र के विपरीत श्रम करवाना या कम उम्र में विवाह करना उसके अधिकारों का हनन है। यदि कहीं ऐसी स्थिति दिखाई दे तो संबंधित अधिकारियों को सूचना देना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। तो दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला 9:43:15 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा केवल बाहरी उपायों से नहीं होती, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास विकसित करना भी जरूरी है। बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रश्न पूछने दें, उनकी बात ध्यान से सुने, गलतियों पर अपमानित करने के बजाय समझाएं। जब बच्चे स्वयं को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करते हैं, तब वे समस्याओं का साझा करने में संकोच नहीं करते। एक मजबूत संवाद बच्चों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। और दोस्तों, यदि किसी बच्चे को सहायता की आवश्यकता हो तो तुरंत मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल, और भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों की सहायता के लिए समर्पित आपातकालीन सेवा है। किसी भी संकटग्रस्त बच्चे की जानकारी इस हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। समाज, परिवार, विद्यालय और प्रशासन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में जीवन जी सके। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अब

तो दोस्तों आज रसधारा में हमने बाल सुरक्षा एवं जागरूकता विषय पर चर्चा की। याद रखिए, बच्चों की सुरक्षा केवल माता पिता या शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। जब हम बच्चों को सुरक्षित वातावरण, सही मार्गदर्शन और खुलकर संवाद करने का अवसर देते हैं, तब हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए संकल्प ले कि बच्चों के अधिकारों का सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उन्हें एक खुशहाल एवं सुरक्षित बचपन देने में अपना योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभकामनाएं और अपना ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी रसधारा में एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। तो दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संजयदा चैनल, मीडियम वेव 297।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग से 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जाँच जारी है।
2: ICU 4th floor पे है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। सामयिन स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16 हो रहे हैं और इसी के साथ आगाज होता है हमारे और आपके रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का। हमारा आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी मेज़बान शहनाज रहमत। आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल से और न्यूज़ ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। पुरकैफ अंजुमन है मेरी अंजुमन अभी, पुरकैफ अंजुमन है मेरी अंजुमन अभी, है साज दिल पे याद तेरी नगमा जन अभी। जी हाँ सामीन, साज़े दिल पर आपकी यादें नगमा जन हैं और हम इसी के साथ आपकी यादों का सहारा लेकर आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईना। आइए देखते हैं आज आईना में हम किस बात का जिक्र करते हैं। आईना बताएगा हर एक अक्स पर अपने, आईना बताएगा हर एक अक्स पर अपने, हालात और ज़माने की कहाँ गर्द रही है। जी हाँ सामीन, हमारा आईना यही बताने जा रहा है और आज हम बात करेंगे बेगुनाह बच्चों के जारहियत के शिकारों का बैनुल अक़वामी दिन के मुतालिक। सामीन, हर साल 4 जून को बेगुनाह बच्चों के जारहियत के शिकारों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। यह दिन अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 1982 में कायम किया था ताकि जंग और जारहियत का शिकार होने वाले मासूम बच्चों की तकलीफ को उजागर किया जा सके।

इस मुकद्दस दिन का बुनियादी मकसद दुनिया भर में जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तशद्दुद से मुतासिरा बच्चों के बारे में शऊर बेदार करना है। जंगों और तनाजात में बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, वो बेघर होते हैं, अपने प्यारों को खो देते हैं और नफ्सियाती सदमात का शिकार होते हैं। सामईन, ये दिन हमें याद दिलाता है कि मासूम बच्चे जंग के झगड़ों में बेगुनाह होते हैं और उन्हें फौरी तवज्जो और हिमायत की ज़रूरत है। आज के दौर में कई ममालिक हैं जहां जंगें जारी हैं, लाखों बच्चे जारहियत का शिकार हैं। ये दिन हमें

अगर हम बात करें कि हमारे बुजुर्ग हमें क्या बताते हैं, तो उनमें सबसे पहले ये आता है कि हम अपनी जिल्द को कुदरती तौर पर साफ और चमकदार किस तरह से बनाएं। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि साबुन की बजाय हल्दी, चने का आटा और गुलाब का पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साबुन हमारी जिल्द के लिए बहुत सख्त होता है और उसे रूखा बना देता है। उनकी और एक हिदायत पर गौर करें तो वो है कि रात को सोने से पहले नारंगी तेल यानी कि बादाम या जैतून का तेल हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। ये जिल्द को नरम और खुश्की से बचाता है। जिल्द की देखभाल के लिए हमें इस तरह की सब्जियां और फल अपने खाने में शामिल करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर हो। ऐसी ग़िज़ाएँ ले जिनसे के जिल्द पर झुर्रियाँ न पड़ें और जिल्द हमारी नरम और शगुफ्ता रहे। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि जिस्म में पानी की कमी जिल्द को बेजान और झुर्रियों वाला बना देती है।

बेहतर होती है और जिल्द को ताजगी मिलती है, इस वजह से वो ताज़ा नज़र आती है। सामईन, जिल्द की हिफाजत के लिए हमें बराह रास्त अल्ट्रा वायलेट शुआओं से भी बचना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग हमें धूप में जाने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि धूप जो है वो जिल्द के कोलाजन को नुकसान पहुंचाती है और झुर्रियाँ बढ़ाती है।

थी, मशहूर शायर बशीर बद्र जुदा हो गए। उनका मकाम, उनका मकसद हम सब जानते हैं और उर्दू शायरी में उनकी क्या अहमियत थी, उन्होंने अपने अशार से किस तरह से लोगों के दिलों पर राज किया है, इससे किसी को भी इनकार नहीं है। तो अब हम अपना प्रोग्राम पेश करते हैं गज़ल उसने छेड़ी, और आज गज़ल उसने छेड़ी के तहत हम बात करेंगे बशीर बद्र की। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की एक खूबसूरत गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में। मौसिकार है जगजीत सिंह।

सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ सामीन, बशीर बद्र, जिनका असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था, उर्दू अदब के अजीम गज़ल गो शायर थे। उनकी पैदाइश 15 फरवरी 1935 को भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अम्बेडकर नगर में हुई थी और हाल ही में उन्होंने हमसे दाइये अबल के लिए लब्बैक कहा और हमसे जुदा हो गए हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शेर व शायरी का आगाज कर दिया था। उन्हें उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी तीनों ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल थी। उन्होंने हमेशा मुश्किल पसंदी से गुरेज किया और सहल अल्फाज में शायरी को तरजीह दी। उन्होंने ज़िंदगी की आम बातों को खूबसूरती से अपने खूबसूरती के साथ अपनी गज़लों में पिरोया, जिसकी वजह से उनकी गज़लें, उनके अशआर आज भी लोगों की ज़ुबानों पर और उनके दिलों में कायम और दायम हैं और लोग उनकी शायरी के सहर में खो जाते हैं, डूबे हुए नज़र आते हैं। मोहब्बत, तन्हाई, शहरी ज़िंदगी का काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनके मौजूआत रहे। तो आइए सुनते हैं उनका ही एक और ख़ूबसूरत कलाम।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। तो दोस्तों कार्यक्रम सुरभि के अंतर्गत आज चर्चा है में हम बातें करेंगे, जी हाँ, इस विषय पर जो संवेदनशील भी है और मानवता से भी जुड़ा है, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है कि वो सुरक्षित वातावरण में जिए, शिक्षा प्राप्त करे, खेल कूद करे और अपने सपनों को साकार करे। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो युद्ध, हिंसा, संघर्ष और आक्रामकता के कारण पीड़ा झेलते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों के विरुद्ध आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हम जानेंगे अब कि इस दिवस की शुरुआत क्यों और इसका महत्व क्या है और बच्चों की हिंसा और संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1982 में की थी। उस समय विश्व के कुछ क्षेत्रों में संघर्ष और युद्ध के दौरान बच्चों पर हो रहे अत्याचारों की खबरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। विशेष रूप से बच्चों के साथ हुई हिंसक घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि दुनिया को यह याद दिलाया जाए कि किसी भी प्रकार की आक्रामकता, युद्ध या हिंसा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। शुरुआत में इस दिवस का उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्र के बीच बच्चों की पीड़ा को उजागर करना था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा और व्यापक हो गया। अब यह दिवस उन सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है जो किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण या उत्पीड़न का शिकार होते हैं। बच्चे समाज का सबसे संवेदनशील वर्ग होते हैं। जब किसी क्षेत्र में युद्ध या हिंसा होती है तो बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ सकते हैं, उन्हें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है और कई बार उन्हें अपना घर छोड़कर शरणार्थियों से शिविरों में रहना पड़ता है। ऐसे बच्चों का बचपन असुरक्षा और भय के वातावरण में बीतता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंसा का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होते हैं। डर, चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी जैसे समस्याएं लंबे समय तक बनी रह सकती है। यही कारण है कि बच्चों की सुरक्षा को विश्व स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर बच्चे के कुछ मूलभूत अधिकार भी होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सम्मान और समानता का अधिकार, खेल और मनोरंजन का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए बाल अधिकार अभी समय के अनुसार दुनिया के प्रत्येक बच्चा इन अधिकारों का हकदार है और इन अधिकारों की रक्षा केवल सरकारों की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब हम बच्चों के विरुद्ध हिंसा की बात करते हैं तो केवल युद्ध या संघर्ष की ही बात नहीं होती, हिंसा के कई रूपों के रूप में सामने आ सकते हैं, जैसे कि शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, ऑनलाइन शोषण, उपेक्षा और भेदभाव। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का विकास प्रभावित होता है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता और सतर्कता दोनों ही आवश्यक है। शिक्षा बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी और सक्षम भी बनाती है। जब किसी क्षेत्र में संघर्ष होता है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, विद्यालय बंद हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इसलिए विश्व भर में यह प्रयास किया जा रहा है कि आपदा या संघर्ष की परिस्थितियों में भी बच्चों की शिक्षा जारी रखी जा सके। शिक्षा बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाला सबसे सशक्त माध्यम है। बच्चों की सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है,

माता पिता शिक्षक और अभिभावक बच्चों को ऐसा वातावरण दे जहां वे अपनी बात खुलकर कह सके। बच्चों की भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी बच्चे के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार की आशंका हो तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। समाज की सामूहिक जागरूकता बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाती है। कुछ संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित करती है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून और योजनाएं भी लागू हैं और साथ ही साथ हर व्यक्ति बच्चों की सुरक्षा में योगदान दे सकता है, जैसे कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करे, बच्चों को सम्मान और स्नेह दे, शिक्षा को बढ़ावा दे, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध करे, बच्चों की बात ध्यान से सुने, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उनका सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बचपन ही बेहतर भविष्य की नींव रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों के विरुद्ध आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा हिंसा, भय और असुरक्षा में जीवन बिताने के लिए नहीं बना है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प ले जहां हर बच्चे को प्रेम, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान मिले। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। तो दोस्तों, कार्यक्रम सुरभि में अब आगे बढ़ते हैं पहल की ओर। पहल में आज हम बातें करेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के विषय में। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना। यह योजना नवंबर 2024 में स्वीकृति की गई थी और इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक बाधा के गुणवत्ता संस्थानों में पढ़ाई के अवसर देना। दोस्तों, कहा जा सकता है कि शिक्षा वो प्रकाश है कि जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन कई बार आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सामने बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। युवा जितने शिक्षित और कुशल होंगे, राष्ट्र उतना ही मजबूत बनेगा। भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। ऐसे में उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके परिवार आर्थिक कारणों से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। कई छात्र छात्राएं प्रतिभाशाली होने के बावजूद फीस, रहने और पढ़ाई के अन्य खर्चों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे देश के प्रतिष्ठित संस्थान शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जारी रख सके। इस योजना की विशेषता यह है कि योग्य विद्यार्थियों को बिना किसी संपार्श्विक अर्थात कोलैटरल और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस योजना पर विचार पर आधारित है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा केवल धन की कमी के कारण नहीं रुकनी चाहिए। भारत में हर वर्ष लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, विज्ञान, कानून और अन्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त करते हैं, लेकिन कई परिवारों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च वहन करना आसान नहीं होता, जैसे कि कॉलेज फीस, छात्रावास शुल्क, पुस्तकें, अध्ययन सामग्री, अन्य शैक्षणिक व्यय। इन सब का खर्च काफी अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अक्सर आर्थिक दबाव महसूस करते हैं और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, प्रतिभाशाली छात्रों को

अवसर प्रदान करना, शिक्षा में समानता बढ़ाना, देश के मानव संसाधन को मजबूत बनाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यह योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि युवाओं के सपनों के साकार करने का माध्यम है। इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता है जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया हो। इसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, विज्ञान, कानून, तकनीकी शिक्षा, अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला हो। यह सुनिश्चित किया गया है कि वियोग्य और मेहनती विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिल सके। और इसकी विशेषताएं यह है कि इससे विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया गया है। ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्यार्थियों को बिना गारंटी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। देश भर के पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता ब्याज सहायता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए सरकार ब्याज सहायता प्रदान करती है। इससे शिक्षा ऋण का बोझ कम होता है और विद्यार्थियों तथा उनके परिवारों को राहत मिलती है। यह सुविधा शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, यह ज्ञान बढ़ाती है, कौशल विकसित करती है, रोजगार के अवसर बढ़ाती है, आत्मविश्वास पैदा करती है, नवाचार और शोध को बढ़ावा देती है। जब अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो देश की प्रगति भी तेज होगी। यदि आपके पास प्रतिभा, परिश्रम और सीखने की इच्छा है तो आर्थिक कठिनाइयां आपके सपनों को रोक नहीं सकती। आज अनेक सरकारी योजनाएं युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। आवश्यक है कि आप सही जानकारी प्राप्त करें, समय पर आवेदन करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और साथ ही अभिभावकों की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देना और उपलब्ध योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कई बार जानकारी के अभाव में विद्यार्थी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना केवल विद्यार्थियों की सहायता नहीं करती बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी योगदान देती है। जब अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तब रोजगार बढ़ेगा, नवाचार बढ़ेगा, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस प्रकार यह योजना शिक्षा और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना इस विश्वास को मजबूत करती है कि प्रतिभा किसी आर्थिक सीमा की मोहताज नहीं होती। हर विद्यार्थियों को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब आर्थिक कठिनाइयां किसी के सपनों की राह में बाधा ना बने। आइए हम सभी शिक्षा के महत्व को समझें, युवाओं को प्रोत्साहित करें और उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम पहल में बस इतना ही। तो दोस्तों, सुरभि कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ चला है। स्टूडियो में वक्त हो चला है 12:14:13। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

on the brink of something great? Or have I lost it?

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली

0: जी, उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश।

0: के जी का, उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोवी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
0: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओ एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आप

0: वो बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: The scoop shot, it gets through, it's a big one, it's a huge boundary, it goes wide, through the offside. He's got him, that's it.
3: Anushka भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपनी स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओह, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ, शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही।
8: जी वही।
6: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल।
5: लेकिन सर,

0: दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
2: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
2: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
0: भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
1: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
1: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू,
1: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी

0: कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा। देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों

0: हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
2: लेकिन माँ,
3: ओफो तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
2: जी,
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ माँ,
3: क्या मिल गया, क्या मिल गया
2: मुझे? मिल गया,
1: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया
3: सब? क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
3: धुआं?
2: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
3: हाँ?
2: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
3: क्या
2: बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ हाँ? भी तो नहीं,
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो।
3: हुँ?
2: हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
1: हाँ
2: उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
6: ना जाने क्या करेंगे,
4: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।
6: अच्छा मजा आ गया, लगता है कुछ हो गया है।

0: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
1: भाई साहब हट जाइए।
2: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
0: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
0: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
0: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
2: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
0: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
1: मान गया भाई, मान गया, कमाल कर दिया बच्चों ने।
0: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
1: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
0: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
0: अरे जबर, अरे दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
1: वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
0: अरे देखो, अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बत्तख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
4: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Energy, security, trade and investment topped the agenda of Prime Minister Narendra Modi's talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. Northeastern Council's meeting underway in Shillong. Union Home Minister Amit Shah chairs deliberations on tourism, agriculture, economic corridor development, infrastructure and connectivity. Veteran film producer Pehlaj Nihalani passes away. Republicans and Democrats jointly seek to end President Donald Trump's military action in Iran. U.S. House of Representatives passes resolution. Southwest monsoon sets in over Kerala. And first World Yoga and Sports Championship to begin in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi held wide-ranging discussions today with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. In a social media post, the Ministry of External Affairs said the leaders reviewed the full spectrum of

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने

0: दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन

0: करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্জয়িতা। এখন শুনবেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন খেয়াল, শিল্পী শিরিন সেনগুপ্ত, রাগ সুধ সরাঙ্গ, তবলায় সমীর নন্দী, হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

0: আকাশবাণী কলকাতা দ্বিতীয় অধিবেশনের সূচনা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার্স অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 55 সেকেন্ড। সংবাদ একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित ना रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे

वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम है इस वक्त उर्वशी का और लेकर हाजिर हूं मैं रिंकू। दोस्तों उर्वशी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारा महिला ओके प्रोग्राम की, जिसपे हम बात करेंगे उड़ान। उड़ान में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी शेरनी की कहानी जिसे आप बिल्कुल शान से सुनना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी शान और गरिमा के अनुकूल एक ऐसी महिला है, वो है किरण बेदी। किरण बेदी जी के जीवन पर आधारित आज हम आपका विषय लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं क्या है और कौन है ये किरण बेदी। सुनो सुनो दोस्तों, जी हाँ श्रोताओं, आज इतिहास के पन्ने से हम एक ऐसी शेरनी का नाम लाए हैं जिसने बंदिशों की बेड़ियों को तोड़कर आसमान में अपनी उड़ान भरी है। जी हाँ, ऐसी उड़ान जिसकी हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम उड़ान में। दोस्तों भारत में एक पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, जिनका नाम सुनकर लोग आज भी डरते हैं और गर्व से उस महिला को याद भी करना चाहते हैं। तो आइए उड़ान में हम सुनते हैं किरण बेदी को और साथ में उस भारत की बेटी को सलाम करते हुए सुनते हैं कि हमारी भारत की जो बेटियां हैं एक से एक है। तो जसपिंदर अरोड़ा की आवाज में ये गाना सुनते हुए पहले हम उसके बाद सुनते हैं किरण बेदी के बारे में।

जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि लड़कियां कोमल होती हैं, लेकिन किरण बेदी, जिनका जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर भारत में एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुआ था, जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली पहली महिला थी और जिन्होंने आईपीएस में अनिवार्य रूप से प्रवेश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाई थी। दोस्तों, किरण बेदी 4 बेटियों में दूसरी बेटी थी। अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री 1968 में और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री 1970, कानून की डिग्री 1988 और सामाजिक विज्ञान में पीएचडी उन्होंने 1993 में किया था, जिसमें उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और घरेलू हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने 1972 में आईपीएस में शामिल होकर विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें मादक पदार्थ अधिकारी, आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ और प्रशासक भी शामिल थे। किरण बेदी को 1994 से जेल महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और साथ ही उनको इस रूप में कार्यों के लिए पहचान भी मिली थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जेल में से एक को नया रूप दिया। उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल परिसर में भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के हनन को संबोधित किया था। उन्होंने तिहाड़ में स्वच्छता और पोषण संबंधी समस्याओं को लक्षित किया, वहां पर साक्षरता और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम भी लागू किए। कोमल है क्या लड़कियां? नहीं दोस्तों, लड़कियां कोमल तभी तक होती है जब तक वो चाहती है। जिस दिन उन्होंने इरादा कर लिया

उस दिन वो कोमल से दूर हटकर क्या बनती है शायद आपको भी नहीं पता। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि लड़कियां नाजुक होती है, धूप में खेलेंगी तो काली पड़ जाएंगी, इनसे शादी कौन करेगा। लेकिन किरण बेदी के माता पिता ने उन्हें सिखाया कि मैदान में पसीना बहाना घर में आंसू बहाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आई हूं। जी हाँ दोस्तों, साल था 1960 का दशक, पंजाब का अमृतसर शहर। उस दौर में बेटियों के हाथ में बेलन होती थी और थमाया जाता था चूल्हा। लेकिन अमृतसर के प्रकाश लाल पेशावारिया ने अपनी बेटी किरण के हाथों में थमाया टेनिस का रैकेट। जी हाँ दोस्तों, और किरण ने जीत कर दिखाया एशियन टेनिस चैंपियनशिप और बनी एशियन टेनिस चैंपियन। लेकिन उनका असली मुकाबला अभी बाकी था। खेल के मैदान से निकलकर वो देश के मैदान में आ गई थी। देश के सिस्टम को सुधारने का मुकाबला उनके लिए बहुत कड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को डर से मिलाया। आइए सुनते हैं के मोहन की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही डर से आंखें मिलाने वाली किरण बेदी 1949 में जब अमृतसर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी तो आम लड़कियों से थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि जब लोग बेटियों को घर की चार दीवारी में रखते थे तब किरण टेनिस कोर्ट पर पसीना बहा रही थी। उन्होंने टेनिस में नेशनल चैंपियन बनकर दिखा दिया कि इरादे मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। साल 1972 ये वो साल था जब किरण बेदी ने इतिहास रचा था। वे भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपी

इसमें शामिल होने वाली देश की पहली महिला बनी थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में रहते हुए उन्होंने कानून को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की गाड़ी को भी गलत पार्किंग के लिए क्रेन से उठवा दिया था। दुनिया उन्हें प्यार से क्रेन बुलाने लगी थी, क्रेन बेदी। जी हाँ दोस्तों, जब उन्हें तिहाड़ जेल का आईजी बनाया गया तो उन्होंने अपराधियों को सुधारने का बीड़ा उठाया। जेल में योग, शिक्षा, प्रार्थना और कविता की शुरुआत की उन्होंने। खतरनाक अपराधियों के दिलों में भी देश प्रेम को जगा दिया। इसके लिए उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। देश के लिए उन्होंने बहुत किया, और देश की बात कर रहे हैं तो देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, देश के पीछे मरने वालियों में से इन जैसे ही सैनिकों का ही हाथ होता है। दोस्तों, साल था 1972 का 26 जुलाई। भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास का वो पन्ना जो सोने के अक्षरों से लिखा गया। 80 पुरुषों के बीच इकलौती महिला अफसर खड़ी थी और पुलिस अधिकारी उन्हें व्यंग से कह रहे थे, मैडम पुलिस का काम बड़ा कड़क होता है, लाठी चलानी पड़ती है, चोर उचक्कों से निपटना पड़ता है, आप संभाल पाएंगी? किरण बेदी ने उस समय सल्यूट करते हुए कड़क आवाज में इसका उत्तर दिया था, सर कानून ना तो मर्द देखता है और ना ही औरत, कानून सिर्फ इंसाफ देखता है, मुझे लाठी चलाना भी आता है और अपराधियों के दिमाग से जुर्म को मिटाना भी। आज से इस वर्दी का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। और किरण बेदी या फिर कहे कि क्रेन बेदी का खौफ दिल्ली की ट्रैफिकों में बहुत ही धड़ल्ले से दौड़ रहा था, क्योंकि एक कांस्टेबल जब उनके सामने दौड़ता हुआ आता है कि मैडम मैडम गजब हो गया, दिल्ली की किनॉट प्लेस में एक वीआईपी गाड़ी गलत जगह खड़ी है, वो गाड़ी देश के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की है, चालान कैसे करे? किरण बेदी ने उस समय बिना झिझक के गाड़ी प्रधानमंत्री की हो या किसी आम इंसान की, अगर रास्ता रोका है तो क्रेन बुलाओ और गाड़ी उठा लो, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का नियम सबके लिए बराबर होगा। जी हाँ, ऐसी ये धाकड़ महिला थी किरण बेदी। इसके इन फैसले से पूरी दिल्ली को हिला दिया था। अखबारों में सुर्खियां छप गई थी कि क्रेन बेदी ने ताकतवर मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े रईस और अब उनके नाम से भी सभी कांपने लगे। आइए सुनते हैं इसे धाकड़ के ऊपर एक और धाकड़ गाना।

जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही धाकड़ की महिला जो जिसका नाम किरण बेदी है, जो एक शेरनी से कम नहीं थी, आज हम उसी की बात कर रहे हैं उड़ान में। वैसे दोस्तों, किरण बेदी वो महिला थी, ऐसी धाकड़ थी कि जिसे सजा के तौर पर शायद लोग समझ रहे थे, उनको उन्होंने अवसर बना लिया। जी हाँ, जब किरण बेदी का ट्रांसफर एशिया की सबसे खतरनाक जेल यानी कि तिहाड़ जेल में कर दिया गया था, तो लोग समझ रहे थे कि ये उनकी सजा है। लेकिन किरण तो किरण थी, उन्होंने इसे एक सजा नहीं बल्कि एक अवसर बना दिया। यहां पर कोई भी सुधर सकता है मैडम, एक कैदी ने गुस्से में कहा था कि मुजरिम है सब समाज, हमसे नफरत करते हैं। लेकिन किरण बेदी ने उनसे नरमी और प्यार से पेश आते हुए कहा, जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं। ये जेल सजा काटने की जगह नहीं, खुद को सुधारने का आश्रम बनाओ। आज से यहां पर लाठी नहीं चलेगी, आज से यहां पर योग होगा, पढ़ाई होगी, संगीत होगा और भगवान की प्रार्थना होगी। तो ऐसे कंधों से कंधे मिलाकर हमारी किरण बेदी चल निकली थी और ऐसे ही देश की भी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी थी। दोस्तों, हमने उड़ान में एक ऐसी महिला के बारे में सुना, जाना और समझा, जो हमारे भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर थी, जिनको हमारा दिल और हमारा मन ऐसे ही सल्यूट करता रहेगा, क्योंकि ऐसे ही धाकड़ महिला और देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने वाली किरण बेदी को दुनिया याद करती है। आइए सुनते हैं उन्हीं के ऊपर एक गीत, जो हमेशा सबसे, कैदी हो, मुजरिम हो या फिर देशवासी हो या फिर पुलिस अफसर, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चली और रही। आइए सुनते हैं ये गीत और इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की।

भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी वार्ता का और लेकर हाजिर हूँ मैं रिंकू।

जी हाँ दोस्तों, आज हम हिंदी वार्ता में आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बात जिसे आज का पूरा समाज जानने को जिज्ञासु है। दोस्तों, युवा भारत के लिए भविष्य, वर्तमान और सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और इस समाज के निर्माण में उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज हम हिंदी वार्ता में ऐसे ही युवा और समाज के प्रति उनका निर्माण में क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका है, इसी विषय पे बात करेंगे। आइए जानते हैं हिंदी वार्ता में युवाओं की भूमिका।

दोस्तों, युवा भारत के लिए उसका वर्तमान, भविष्य और सबसे बड़ी महाशक्ति होती है। इसे आप चार अगर मुख्य बिंदुओं में समझे तो जान सकते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ की लगभग 65% आबादी कामकाजी उम्र की ही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चला सकती है। इसकी आर्थिक इंजन यानी कि इकोनॉमिक इंजन युवा अपने नए आइडियाज और स्टार्टअप से भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना चुके हैं। वे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले अब बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया, AI और नई तकनीकों को अपनाकर युवा देश को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर अभी मजबूत बना रहे हैं। लेकिन आज का युवा जातिवाद, भ्रष्टाचार और लैंगिक असमानता जैसी पुरानी कृतियों के खिलाफ फसतासी जा रहा है। लेकिन इन कुरूतियों के खिलाफ न जाकर अगर वो ताकतवर बने तो युवा सबसे बड़ी देश की ताकत होती है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो युवाओं के बिना विकसित भारत का सपना देखना असंभव है। जी हाँ, युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम सभी जानते हैं। लेकिन जो भारत की 65% आबादी युवा के देश के कंधों पर टिकी है और 35 वर्ष के कम आयु वाले जो भी मनुष्य है, देश है, वो केवल देश का भविष्य नहीं तय कर सकती बल्कि वर्तमान को बदलने वाली सबसे ऊर्जा, नवाचार और सामाजिक बदलाव के संवाहक युवा ही है। दोस्तों, भारत के पास काम करने वाली एक विशाल युवा आबादी है जो देश को आर्थिक प्रगति यानी कि GDP को गति दे रही है। युवा पारंपरिक नौकरियों से हटकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप

हब बन चुका है, जिसका नेतृत्व आज का युवा ही कर रहा है। डिजिटल इंडिया, AR और नई तकनीकों को अपनाने में युवा सबसे ज्यादा आगे है, जिसे ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों और आधुनिकरण भी में भी वो आगे रहे हैं। अगर हम कहें कि सामाजिक परिवर्तन और कुरूतियों का विरोध भी युवा ही कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि पुरानी रूढ़ियों को, चुनौतियों को आज युवा ही संभाल रहे हैं। आज के युवा जातिवाद, लिंग भेद और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं, आधुनिक और समाजवेशी सोच रखते हैं। युवा समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर बात कर रहे हैं, जिससे समाज अधिक जागरूक भी बन रहा है। और पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान जैसी सामाजिक जिम्मेदारियों में भी युवाओं की ही भागीदारी अभी अधिक मानी जा रही है, सर्वाधिक मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों में बदलाव भी युवा ही तो ला रहे हैं। दो पीढ़ियों के बीच का सेतु, युवा परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का काम भी इन युवाओं के, उन जवानों के कंधे पर ही है। वे पुरानी संस्कृतियों को, धरोहर को संजोते हुए भी वैश्विक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, जिसे ग्लोबल आउटलुक कहा जाता है। और पहले के पारंपरिक समाज के मुकाबले आज के युवा अपने करियर और जीवन के फैसले लेने में अधिक स्वायत्त और स्वतंत्र हो रहे हैं, जिससे परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आज का युवा देश का युवा है, रीढ़ की हड्डी है। वो पुराने विचारधाराओं पर अपने जीवन को नहीं संवारता, बल्कि पुराने विचारधाराओं को लेकर नए तकनीकों से अपने जीवन को संवारना चाहता है। जी हाँ, वो आत्मनिर्भर है, दो पीढ़ियों के बीच का सेतु है। साथ साथ राजनीतिक और नीतिगत भागीदारी में भी अपनी जागरूकता को बनाए रखता है। आज के युवा सिर्फ वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सरकार की नीतियों और जवाबदेही पर सवाल भी उठाते हैं। आज के युवा छात्र राजनीति और स्थानीय निकायों से लेकर मुख्य धारा की राजनीति में युवाओं का प्रवेश बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे देश को नई सोच वाली नीतियां मिल रही हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो समाज निर्माण में उनकी बहुत अच्छी भूमिका है। समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका नींव के पत्थर जैसी है, क्योंकि किसी भी प्रगतिशील समाज की दिशा और दशा को उसकी युवा पीढ़ी की सोच पर ही निर्भर किया जा सकता है। आज की युवा अपनी ऊर्जा, नई सोच और साहस से पुरानी समस्याओं के आधुनिक समाधान खोजते हैं। समाज निर्माण में युवाओं की मुख्य भूमिकाओं को हम अगर देखें तो ऐसे समझ सकते हैं कि युवा पीढ़ी अंधविश्वास, जातिवाद, दहेज प्रथा और लिंग भेद जैसी पुरानी सामाजिक बुराइयों को स्वीकार नहीं करती, बल्कि उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाती है। आधुनिक युवा समाज में महिलाओं, वंचित वर्गों और हाशिए पर खड़े लोगों को समान अधिकार दिलाने के पक्षधर भी होते हैं। और आज का युवा शिक्षित युवा है। शिक्षित युवा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जाकर बच्चों और वयस्कों को शिक्षित करने के लिए स्वैच्छिक अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ आज का युवा तकनीकी रूप से सक्षम है, इसलिए वो समाज के बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना भी सिखाता है। आज का युवा बेरोजगार है, लेकिन साथ में शिक्षित भी है, और वो अपने बेरोजगार होने पर रोजगार के नए अवसर भी ढूंढ रहा है। युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि स्टार्टअप और नए व्यवसायों के जरिए रोजगार पैदा करने वाले भी बन रहे हैं। युवा नई तकनीकी और कौशलों को सीखकर देश की श्रम शक्ति को मजबूत बनाते हैं, जिसे पूरे समाज का आर्थिक स्तर सुधारता है। वो पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जल संरक्षण और स्वच्छता को अभियानों जैसे भारत में उन्होंने नेतृत्व किया है। मुख्य रूप से उन्होंने ही तो किया है। युवा समाज में योग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो उन्होंने अपनी नैतिक और जिम्मेदार नागरिकता की भी भूमिका निभाई है। एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए युवा नियमों का पालन करते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित

दिखाई देते हैं। बाढ़, महामारी या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय युवा सबसे पहले आगे आकर पीड़ितों की मदद और राहत कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। यदि आप इस विषयों पर ध्यान देंगे तो आज का युवा समाज का बदलता हुआ युवा है, कल का युवा नहीं है। कल कुछ लोग अपनी परंपरा रूढ़िवादी संस्कारों में ही

0: साथ अपने ही फर्म में वो आगे बढ़ना चाहता है। उनकी नई सोच, नई दिशा के कारण ही इस समाज में बदलाव आना निश्चित हुआ है। आज हम हिंदी वार्ता में उन्हीं के विषय में बात कर रहे थे कि समाज में किस प्रकार से उन्हीं के कारण भूमिका का बदलाव हुआ है।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृत्तः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपं ईरान देशं विरुद्ध अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरुद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्रावृढः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत वेनेजुएला संबंधानां विविधाः पक्षाः समीक्षिताः। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेशः, औषधि निर्माणं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनं तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारस्य उपायाश्च चर्चिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् रुद्रेन्द्र टंडनः प्रोक्तवान् यत् द्विपक्षीय वार्ताः उभयोः देशयोः सम्बन्धं सुदृढीकरोति।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: डेल्सी रोड्रिग्स महाभागा द्विदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः नवदिल्लीम् आगता। अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोः देशयोः आर्थिक ऊर्जा क्षेत्रयोः सहयोगः अधिकः सुदृढः भविष्यति इति अपेक्षते। विदेश मंत्री एस जयशंकरः वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महोदयया सह सममिलत् द्विपक्षीय सहयोगस्य सुदृढीकरणे प्रदत्तं बलम्। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री एस जयशंकरः अद्य प्रातःकाले वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महोदयया सह सममिलत्। अस्मिन् अवसरे उभयोः देशयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणं, विविधेषु क्षेत्रेषु सहकार विस्तारश्च चर्चिताः। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता तथा केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मण्डलस्य पूर्वाध्यक्षः पहलाज निहलानी अद्य मुंबई नगरे दिवंगतः। सः 76 वर्षीयः आसीत्। चलचित्र निर्मातृत्वेन असौ हथकड़ी इति चलचित्रेण स्वकार्यजीवनस्य आरम्भं कृतवान्। इल्ज़ाम इति चलचित्रेण अभिनेत्री गोविंदाय प्रमुखस्य अवसरस्य प्रदानस्य श्रेयः अपि तस्मै वर्तते। 15-2000 वर्षे सः केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मण्डलस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रंपं ईरान देशं विरुद्ध अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। एषः चतुर्थः अवसरः अस्ति यदा प्रतिनिधि सभा ताभिः युद्ध सम्बद्धाभिः शक्तिभिः सीमिता भवेत् इत्यर्थं प्रयासं करोति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम एव अयम कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम है इस वक्त गुलगुलशन का और लेकर हाजिर हूँ मैं रिंकू। दोस्तों सुर ताल और जज्बात की इस बेहद खास महफिल है गुलगुलशन। जी हाँ, जिसपे आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज की ये शाम कोई आम शाम नहीं। जी हाँ, आज सुरों का एक ऐसा गुलदस्ता हम सजाएंगे जिसमें गजलों की नजाकत भी है और हमारी मिट्टी के लोकगीतों की महक भी, और साथ ही साथ कव्वाली का वो रूहानी जोश भी है जो सीधे खुदा से आपके तार को जोड़ देता है। दोस्तों कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो चलिए अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि हमारे बीच है गजलों का एक गुलदस्ता, वो भी पंकज उदास की आवाज में। इसे सुनते हैं और इसके बाद हम और भी गीतों का रुख करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, गजलों की इस मखमली दुनिया से निकलकर जब हम आपको ले चलेंगे ना कि हमारी जड़ों पर, हमारी मिट्टी की दुनिया में, जहाँ हमारी माटी हमारे अपने खेतों और खलिहानों की महक, यानी हमारी लोकगीत। दोस्तों, गुलगुशन का कार्यक्रम कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक तरफ गजल है तो एक तरफ कवाली और एक तरफ अपनी मिट्टी की जड़ें, यानी कि लोकगीत। दोस्तों, लोकगीत किसी भी समाज का आईना होते हैं, जो सीधा हमारे पुरखों की विरासत से जुड़ते हैं। वैसे अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास को, और अभी चलिए हम सुनते हैं जसपिंदर नरूला, प्रीति उत्तम और निहार की आवाज में फिल्म पिंजर से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, माटी की खुशबू जिसमें बसी है वो संगीत तो पुराना हो ही नहीं सकता, और शहर की चकाचौंध में भी हमें अपने गांव का राग सुनाना बहुत ही पसंद है। या अब सुन रहे थे जसपिंदर नरूला को प्रीति उत्तम और निहार की आवाज में फिल्म पिंजर से। दोस्तों गुलगुलशन का कार्यक्रम चल रहा है, स्टूडियो की घड़ी में अभी बज रहे हैं 6:44 और गीतों का सिलसिला यूं ही नहीं जाएगा क्योंकि अभी दौर है कवाली का। जी हाँ, वक्त का आ गया है उस दौर का जिसका आप सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

क्योंकि एक ऐसा संगीत जो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, जहां दोनों हाथ उठ जाते हैं और तालियां खुद ब खुद बजने लगती है और रूह झूम उठती है, जहां लोग अपने गीतों के माध्यम से ईश्वर को याद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कवाली की। कवाली का मतलब है सीधे दिल से खुदा की इबादत करना। और अगर वो गीत हो, वो संगीत हो नुसरत फतेह अली खां की आवाज में, तो फिर क्या बात है। दोस्तों, आइए सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां साहब को।

जी हाँ दोस्तों, शमा जलती है तो परवाने चले आते हैं। जिक्र होता है जब महफिल में सुभान अल्लाह नुसरत अली फतेह अली खां की आवाज में जब हम गाने बजाते हैं। दोस्तों वैसे तो गीतों का यह सफर सिलसिला चलता ही रहेगा, लेकिन आज की ये शाम इस संगीत की शाम रही और गुलगुशन का कार्यक्रम ऐसे ही संगीतों से भरा पड़ा है। दोस्तों आज हमने गजल, लोकगीत और कवालियों से मिलाकर इस शाम को शायद ही शायद एक मुकाम तक पहुंचा पाया है और ये शाम वैसे ही बनी रहे ऐसी आशा करते हैं। वैसे दोस्तों समय की गति अपनी गति से तो चली रही है, लेकिन इस समय के साथ हम रुक करेंगे, एक और गीत आपके लिए छोड़ जाएंगे और साथ ही रिंकू को इजाजत आपको देना होगा, क्योंकि फिर हम आपके लिए आएंगे 7 बजे और हमारा कार्यक्रम रहेगा 7:30 दर्पण में। तो चलिए इस गीत को सुनते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करे।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। इस वक्त कार्यक्रम है दर्पण का और लेकर हाजिर हूँ मैं रिंकू। जी हाँ दोस्तों, दर्पण कार्यक्रम में अभी स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 6:29 और हम आपके लिए लाए हैं कार्यक्रम दर्पण।

दोस्तों आज दर्पण कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज एक नजर में आक्रमण व्यवहार का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

के ऊपर। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन ये हर साल 4 जून को मनाया जाता है। ये विषय पर इस विषय पर एक प्रभावशाली बातें अगर हम बता पाए तो ये हमारी उत्सुकता होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे दोस्तों के हिसाब से तो आज 4 जून है और आज का दिन दुनिया भर के उन मासूम बच्चों को याद करने का है जो बिना किसी गलती के, बिना किसी हिंसा के युद्ध और आक्रमणता का शिकार होते हैं। इस विशेष दिन को हम इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, वे मासूमियत और उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के कारण लाखों बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि हम सब मिलकर इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सके, उन्हें डर से मुक्त एक सुरक्षित माहौल देना हम सब की जिम्मेदारी है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा नहीं होने देंगे। हर बच्चे को शिक्षा, प्यार और सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है और इसीलिए मासूमों पर हिंसा बंद करो, बचपनों का बचपन सुरक्षित करो। हर बच्चे का है ये अधिकार, उसे मिले सुरक्षा, शिक्षा और प्यार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात कर रहे थे आक्रमण व्यवहार का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हम आज मना रहे हैं। और आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां हर बच्चा बिना किसी डर के मुस्कुरा सके और अपने सपनों को पूरा भी कर सके।

दोस्तों एक नजर के बाद अब हम रुख करेंगे खेल जगत में। खेल जगत, जी हाँ, खेल के बिना जहाँ पर दुनिया ही क्या, पूरा विश्व ही अधूरा है। ऐसा खेल जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में आज हम लाए हैं आपके लिए खेल हॉकी और उसके साथ हम बात करेंगे अय्यर दिलीप ग्रेस इक्का के बारे में।

दोस्तों हॉकी, हॉकी एक प्रकार का स्टिक खेल है जिसमें दो विरोधी टीमें हॉकी स्टिक का उपयोग करके गेंद या डिस्क को गोल में डालती है। हॉकी कई प्रकार की होती है और प्रत्येक खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या, उनका पहनावा और खेलने का मैदान अलग अलग होते हैं। हॉकी में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार शामिल होते हैं जिन्हें खुले मैदान, बर्फ की चादर या फिर इंडोर जिम में खेला जा सकता है। हॉकी के कुछ रूपों में स्केट की आवश्यकता होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, रोलर हो या फिर आइस स्केट, जबकि अन्य में नहीं। विभिन्न खेलों को आमतौर पर हॉकी शब्द से पहले विशेषण लगाकर अलग किया जाता है, जैसे कि फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, रोलर हॉकी या फिर रिक हॉकी या फिर फ्लोर हॉकी। इन सभी खेलों में दो टीम एक साथ एक दूसरे के खिलाफ खेलती है और हॉकी स्टिक का उपयोग करके खेल की वस्तु, चाहे वो गेंद हो या फिर डिस्क, जो विरोधी टीम के गोल में डालने का प्रयास करती है। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो सीधी स्टिक और बीच में छेद वाली खुली डिस्क, जिसे अभी भी पक कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम कहें कि इसके नियम 1936 में महामंदी

के दौरान कनाडा के सैम जैक्स द्वारा संहिताबद्ध किए गए थे और दूसरा अपवाद एक ऐसे प्रकार से संबंधित है जिसे बाद में लगभग 1970 के दशक में संशोधित किया गया ताकि एक संबंधित खेल बनाया जा सके जिसे नवगठित स्पेशल ओलंपिक्स में एक टीम खेल के रूप में शामिल करने के लिए उपयुक्त माना जा सके। जिम रिंगेट का खेल हालांकि फ्लोर हॉकी से मिलता जुलता है, वास्तव में उसका एक रूप नहीं क्योंकि इसे 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था और ये कनाडा की आइस स्केटिंग टीम खेल रिंगेट पर आधारित है जिसका आविष्कार 1976 में कनाडा में ही हुआ था। रिंगेट का आविष्कार भी सैम जैक्सन ने किया था और वहीं कनाडियाई जिनमें 1936 में ओपन डिस्क शैली से फ्लोर हॉकी के नियमों को संहिताबद्ध किया गया था। हॉकी शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया 1773 की पुस्तक ज्वेनलाइन स्पोर्ट्स एंड पास्टाइज में टू हिच और फ्रिफिक्ट मेमोर्स ऑफ द ऑथर इंक्लूडिंग ए न्यू मोड ऑफ इन्फेंट एजुकेशन बॉय रिचर्ड जॉनसन में मिलता है जिसके आधार पर अध्याय 11 का शीर्षक हॉकी खेल में नए सुधार था। ये विश्वास की हॉकी का उल्लेख इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय द्वारा सन 1363 की एक घोषणा में किया गया था। घोषणा के आधुनिक अनुवाद पर आधारित है कि जो मूल रूप से लैटिन में लिखा गया था स्पष्ट रूप से पिलम मैलियम पोडियम और बैकुलोरम था और ये कैनी बुकिम और गैलोरम पुंगम खेलों को प्रबंधित करती थी। अंग्रेजी इतिहासकार और जीवनीकार जॉन स्ट्राइप ने 1720 में घोषणा का अनुवाद करते समय हॉकी शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि कैनी बुकिम का अनुवाद कैम्बिक के रूप में किया। विश्व के अधिकांश भागों में बिना स्पष्टीकरण के हॉकी शब्द का प्रयोग फील्ड हॉकी के लिए किया जाता है जबकि कनाडा और साथ ही में संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और पूर्वी और उत्तरी यूरोप के अधिकांश भागों में यह शब्द आमतौर पर आइस हॉकी को संदर्भित करता है। हाल के इतिहास में हॉकी शब्द का प्रयोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फील्ड हॉकी जो कि एक स्टिक और बॉल का खेल है और शीतकालीन आइस टीम स्केटिंग खेल बैंडी और आइस हॉकी दोनों के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा इसलिए कि फील्ड हॉकी और अन्य स्टिक और बॉल खेल और उनके संबंधित रूप उन खेलों से पहले खेले जाते थे जो अंततः बर्फ पर आइस स्केट के साथ खेले जाने लगे जैसे कि बैंडी और आइस हॉकी के साथ ही रोलर हॉकी और फ्लोर हॉकी जैसे सूखे फर्श वाले खेल खेले जाते थे। हालांकि आम बोलचाल में जिस हॉकी का प्रयोग होता है वो अक्सर स्थान भूगोल और संबंधित खेल के आकार और लोकप्रियता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यूरोप में हॉकी आमतौर पर फील्ड वर्क को संदर्भित करता है जबकि कनाडा में ये आमतौर पर आइस हॉकी को संदर्भित करता है। बैंडी के मामले में इस खेल को पहले बर्फ पर हॉकी कहा जाता था और ये आइस हॉकी के संगठित और विकास से पहले खेला जाता था लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आइस हॉकी जो कि एक अलग खेल है के साथ भ्रम से बचने के लिए इसका नाम आधिकारिक तौर पर बैंडी कर दिया गया। बैंडी हालांकि अन्य खेलों से संबंधित है लेकिन इनकी प्रेरणा कुछ अंश एसोसिएशन फुटबॉल से भी मिलता जुलता है। वैसे किसी भी समय हॉकी स्टिक डंडों से छोटी गेंद हॉकी का उपयोग करना बहुत ही बेहद खतरनाक हो सकता है। हॉकी इंडोर हॉकी भी है और फील्ड हॉकी भी है साथ ही इसका इतिहास है कि घुमावदार छोड़ियों और गेंद से खेले जाने वाले खेल कई संस्कृतियों के इतिहास में पाए जा सकते हैं। मिश्र में 4000 साल पुरानी नक्काशी में भी पाए जाते हैं।

करते हैं। खिलाड़ी अय्यर दीप ग्रेस एक्का, जी हाँ, जिसे दीप ग्रेस एक्का के नाम पर जाना जाता है, उनके बारे में हम जानेंगे। जून 1994 को ओडिशा में जन्मी दीप ग्रेस एक्का एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय टीम में मुख्य रूप से डिफेंडर के रूप में खेलती हैं। दीप ने स्कूल के दिनों में ही फील्ड हॉकी खेलना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ अपने यूनिफॉर्म के साथ जो राष्ट्रीय टीम में मुख्य रूप से डिफेंडर के रूप में ही खेलती रही। दीप ने स्कूल के दिनों से ही फील्ड हॉकी खेलना शुरुआत कर दिया, लेकिन तेज कुमार जरस के मार्गदर्शन पर बुनियादी तकनीकें उन्होंने सीखी और 2007 में भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ी और राज्य स्तर पर खेलना शुरू किया। अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने लुखेला एक्का और सरोज मोहंती से मार्गदर्शन लिया। 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले दीप ने देश के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। उन्होंने 2011 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया और जूनियर एशिया कप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उनका चयन किया गया। उसी वर्ष उन्होंने 4 देशों के टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया जहाँ भारत ने कांस्य पदक जीता था। 2011 की अंडर 18 गर्ल्स एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में टीम के साथ कांस्य पदक जीतने पर उन्होंने 2013 के महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीतने वाली राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्होंने 2014 में मलेशिया के खिलाफ महिला हॉकी टेस्ट सीरीज 6-0 से जीतने में भी अपनी टीम की मदद की। उसी वर्ष उनकी टीम ने 17वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अपनी टीम के साथ 2017 के महिला हॉकी एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने जकार्ता में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में अपनी टीम के साथ रजत पदक भी जीता और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जिसके अनुसार कहा जा सकता है कि सभी पदकों को जीतने के बाद ये दीप ग्रेस एक्का भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है और हॉकी उनका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया कि हॉकी के माध्यम से कोई एक लड़की कितनी ज़्यादा ही सफल हो सकती है और सफलता की कुंजी को ऊपर उठा के लेके जा सकती है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खेल जगत, जिसमें आज हम बात कर रहे थे खेल हॉकी के विषय में और साथ ही हम बात कर रहे थे खिलाड़ी अय्यरदीप ग्रेस एक्का के विषय में। लेकिन दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त हो रहे हैं 7:44 और वक्त है अभी कुछ फिल्मी गीतों का। तो आइए शुरू करते हैं कुछ फिल्मी गीत, सुनते हैं कुछ गीत और आनंदित होते हैं साथ ही में पीटी बुल और दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उसके साथ दे रहे हैं नीरज श्रीधर। सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे पिटबुल को, साथ में थे जल्दीज दोशानी और साथ में थे नीरज श्रीधर, और आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया 3 से ये गीत। आइए एक और गीत का रुख करते हैं, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुनते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:54 हो चुके हैं, तो यानी कि रिंकू को इजाजत लेना होगा आप सभी से। लेकिन सुनाई देती हूँ आपको कुमार सानू की आवाज में ये गीत फिल्म दिल का क्या कसूर से, जिसे आपने बहुत सालों बाद सुना होगा। आइए सुनते हैं ये गीत और रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully?
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी

0: होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लेरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लेरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
8: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
9: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई।

0: पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala.

0: Copyright. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत। ये कार्य मंत्रालय भारत सरकार में, पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा, तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्ति

0: करने के लिए और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
1: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत PM जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे एक उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10th मई से 17th मई तक ये टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर, मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, उस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
0: पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं, तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाया मनाया जा सके?
1: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है। अगर

0: आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह, बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जिसे आपने कहा, बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं, और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने, आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान हमने, जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था, जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप इनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए, और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा, उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं, अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र, जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम लोग, मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे, जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं, अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से, इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 3.25 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान, जो आपका प्रश्न था कि डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के, जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे, जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाके इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के, वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है, और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहाँ भी लगातार देने का प्रयास
1: जी। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है, उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई, ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने, और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के कि ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिलके कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो

0: स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के उन समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के उस पे, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सके।
1: जी पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ उनकी व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: श्री टंडन ने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला के साथ मजबूत प्राकृतिक तालमेल दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इस महीने वेनेजुएला कच्चे तेल के मामले में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि भारत की वेनेजुएला के साथ 2008 से एक दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेट कूपर से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल के समय में भारत ब्रिटेन साझेदारी के मजबूत होने की सराहना की है, जिससे दोनों देशों के लिए विकास के अभूतपूर्व अवसर खुले हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन भविष्योन्मुखी और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने में सक्षम है। आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेट कूपर के साथ हुई बैठक में अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि ये बैठक विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन विजन 2035 पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि ये भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने का भी अवसर है। बाद में विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश सचिव की उपस्थिति में लिवरपूल विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा गया। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकना है। ये प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 मतों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। हालांकि प्रस्ताव को अभी रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि सीनेट इसे मंजूरी भी दे देती है तब भी राष्ट्रपति ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए अमरीका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्ला ने समझौते की प्रमुख शर्तों को अस्वीकार कर दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस प्रस्ताव को स्थायी युद्ध विराम का अंतिम अवसर बताया। संयुक्त राष्ट्र के एक शांति सैनिक की आज लेबनान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मार जायोन के पास मोर्टार गोलीबारी में मृत्यु हो गई। लेबनान के संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के अनुसार गोलीबारी में शांति सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह

0: समारोह को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मन शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये विस्तार आने वाले दिनों में प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इवेंट प्रबंधकों के लिए विविध अवसर पैदा करेगा।
1: हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
0: वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का ऐतिहासिक पहला संस्करण आज अहमदाबाद के एका एरिना में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और दो पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कल कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट ने 2019 के ईस्टर संडे हमलों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांगस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे योगासन को वैश्विक खेल की पहचान मिलेगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम किरण झा विद द वर्ल्ड न्यूज। Lines. India and Venezuela review bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. Republicans and Democrats jointly seek to end President Donald Trump's military action in Iran. U.S. House of Representatives passes resolution. World Yogasan Sports Championships begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Gangas and Vishwanath Suresh enter into top three. Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित

0: करें क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudhrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC, Mr. Shah in a social media post said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the an EC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure